नजर, वो कौन है जिसने किया है मुझको खुद से बेखबर, वो कौन है जो मेरे पल पल में शामिल है, वो कौन है जो मेरी मंजिल है, वो कौन है जिसे मैं सुनना चाहता हूं।

जाना कभी ऐसा न

0: ऐ मेरी हमरक्स मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 89.6 89.6 मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: ईद की पार्टी आपकी तरफ से और सेलिब्रेशन खास बनाने के लिए गानों की ईदी मिर्ची की तरफ से।
1: Authentic, original, and better than our rival.

सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 89.6 89.6 मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: पावर्ड बाय iPay बेस्ट रेट नो स्ट्रेस iPay वॉलेट का भरोसा डाउनलोड कीजिए आज ही iPay द बेस्ट रेमिटेंस रेट इन कतर.
0: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 89.6
2: it's
0: hot मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 89.6 मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 89.6 89.6 मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 89.6
0: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi. It's hot. Hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
2: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
3: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पूछा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
2: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
3: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
2: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
3: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका घटो पहले भी बताओ ना मेरे को।
2: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
3: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
2: कौन कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
3: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
2: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
3: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया है फोन।
2: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
3: आ गए वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
2: फोन तो घर पे है लेकिन।

0: इनकम टैक्स का फार्म है, आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
1: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसे हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ रहे हो?
0: मैं कहाँ रहा हूँ?
1: सॉरी, आप अभी कहाँ रहो?
0: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
1: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब खुश होने नहीं आ रहा, इसको परेशान हूँ मैं, जो हर साल का रिटर्न वेटर्न सब फाइल कर देता हूँ वो अभी।
0: आशीष, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
1: यार।
0: थैंक यू।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: ए पगला,
4: दोस्ती का गुस्सा है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
5: भाई साहब, सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
6: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा,
7: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM Mirchi 1, it's hot.
10: Mubarak Eid Mubarak, Mubarak Eid Mubarak,
11: Gaano ki Eidi on Mirchi, it's hot.

0: सेवैया खाइए और सुनते जाइए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची हिट्स ऑन।
1: ओ चनती कुड़ी, ओ चनती कुड़ी।

0: It's hot.
1: Mubarak Eid Mubarak.
0: Gaano ki Eid. On Mirchi. It's hot.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay.
1: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
2: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं।
3: Hi everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: This is Mirchi and it's hot. आप सबको ईद मुबारक।
1: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक।
2: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो।
0: Only on 89.6 Mirchi 1.
5: Mirchi 1.
0: It's hot.
6: मुबारक ईद मुबारक।
0: गानों की ईदी ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिब्लिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
3: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
4: वीडियो गेम्स बंद हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
3: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
2: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.

0: रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8। सुनते रहिए 89.6 मिर्ची वन।

सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 89.6 89.6 मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 89.6 89.6 मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
2: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

रहे गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: रहिए गानों की ईदी ओनियन मिर्ची इट्स हॉट।
1: घर दे कम ना रुकन गे ओ जिम विच फट्टे चकांगे।
2: यू बेटर वॉच हर शाइन।
1: टारगेट पूरे करन गे हुन बदले रूल जमाने दे।
2: यू बेटर वॉच हर शाइन।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000-1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay.
1: फिर खाली हाथ चले आए. मेरी ईदी कहाँ है?
2: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं.
3: This is Tapsee Pannu.
1: आप सभी को ईद मुबारक.
4: It's hot.
1: अरे वाह, ये हुई ना बात. आपको भी ईद मुबारक.
2: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो.
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
5: मुबारक ईद मुबारक. मुबारक ईद मुबारक.
0: गानों की ईदी. On Mirchi. It's hot. Hot. बिरयानी की खुशबू, सेवई की स्वाद, ईद की सबको मुबारकबाद.

0: ईद की खुशियाँ मनाओ और मिर्ची की तरफ से कानों की ईदी ले जाओ।
1: एक कोने में था बैठा जब मुझे वो दिखी थी, वो सबसे अलग थी, वो सबसे हंसी, आंखें मेरी फिर उसकी आंखों से जमेली, एक बारी दो बारी फिर निकली हंसी, एक हाथ हवा विच दूजे च गिलास, मेनू नी पता सी गिलास च की, बट हौली हौली लक नु घुमा के नचदे लगे सो सेक्सी।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अहोरा चे अब्रा लोस ओजोस ओपन योर आईज।
2: ओए होली होली गिद्दे विच

0: Yeah, baby. Yeah, baby.
1: तेरा ध्यान किधर है? गानों की ईदी इधर है. Only on Mishy. It's hot.

सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: हिमेश रेशमिया, अगर आप एक रेडियो जॉकी होते तो आप किस टॉपिक पर प्रोग्राम करते?
4: मैं डेफिनेटली लव का ही प्रोग्राम करना चाहता, जो प्रॉब्लम है कॉलर की और रोमांस में, लव में, छोटी छोटी बातें, वो कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
3: हिमेश रेशमिया, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay.
1: Mirchi gano ki Eidi. Only on Mirchi. It's hot.

सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 9। सुनते रहिए 89.6 मिर्ची।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Mirchi Ganuki Edi. Only on Mirchi. It's hot.

0: रहे गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 89.6
2: गानों की ईदी ऑन मिर्ची इट्स हॉट बिरयानी की खुशबू सेवई की स्वाद ईद की सबको मुबारकबाद।

0: और सुनते जाइए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एसॉट
1: हेलो।
2: हाय, अब अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना।
1: हाँ।
2: कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
3: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहें। नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
1: कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
3: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
1: मीसम नाम है।
3: मीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
1: 1200 रुपए।
3: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दीजिए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
1: हाँ जी, 1 सितंबर 1980।
3: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
1: जी
3: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं?
1: क्लाइंट्स और गर्लफ्रेंड्स वगैरह।
3: गर्लफ्रेंड से ज्यादा करते हैं सर? किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
1: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
3: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
1: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
3: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर, एक ही बार में पूछनी है ना आपको, क्या पढ़ी है उसके पीछे पढ़ने की? तो सर, आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड। सर इतना गुस्सा मत होइए।
4: सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मुझे आप ही की गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पहले, उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
1: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है।
4: नहीं सर, मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, मेरे साथ
1: पिटोगे,
4: मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
6: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
7: बहुत कुछ होगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM Mirchi 1 Mirchi 1 It's hot
0: Mubarak Eid Mubarak Gano ki Eid on Mirchi It's hot hot बिरयानी की खुशबू, सेवई की स्वाद, ईद की सबको मुबारकबाद।

0: सुनते जाइए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एसॉन्ट।
1: मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक,
0: गानों की ईदी ऑन मिर्ची एसॉन्ट। बिरयानी की खुशबू, सेवई की स्वाद, ईद की सबको मुबारकबाद।
2: हर घड़ी हर पहर मुझे बस खा।

Alan Mirchi. It's hot. It's hot. बिरयानी की खुशबू, सेवई की स्वाद, ईद की सबको मुबारकबाद।

0: किसानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एसॉट।
1: मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक,
0: गानों की ईदी ऑन मिर्ची एसॉट। बिरयानी की खुशबू, सेवई की स्वाद, ईद

0: सुनते जाइए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एसॉट।
1: घर दे कम ना रुकन गे ओ जिम विच फट्टे चकांगे।
2: You better watch her shine।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000-1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar.
1: Let's do the iPay.
2: फिर खाली हाथ चले आए. मेरी ईदी कहाँ है?
3: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं.
4: Hi, Mirchi listeners. This is Jacqueline Fernandez. Wishing all of you guys a very, very Eid Mubarak.
5: It's hot.
2: अरे वाह, ये हुई ना बात. आपको भी ईद मुबारक.
3: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो.
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot. It's hot.
6: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
0: गानों की ईदी ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: किसानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एहसास।
1: मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक।
0: गानों की ईदी ऑन मिर्ची एहसास।

0: सुनते जाइए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एसॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है। What did you steal in your childhood?
4: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे। मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसके चॉकलेट्स खत्म कर दिए। कभी आज तक बोला नहीं कि वो मैं था।
3: What a way to confess, अभय देओल। अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज ए चाइल्ड। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: एंजॉयिंग सेवई शवरमा बिरयानी एंड कबाब बिट्री पे आप सुन रहे हैं गानों की ईदी जनाब।
1: अरे यार कोई एसी चला दो यार।
2: सही है सही है।

0: गले लगा के देख।
1: जम के खाइए है अगर सेवई और बिरयानी, तो कीप डांसिंग एंड फॉरगेट कैलोरीज की कहानी।

0: और सुनते जाइए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एसॉन्ट।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: मैं मराठी हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड बंगाली है, उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कैसे समझाऊँ?
2: अरे कोचू, बंगाली है तो बंगाली में समझाना।
3: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे अलकट हंस।
4: मिर्ची घड़ी में बज रहे हैं 10, आप सुन रहे हैं मिर्ची 101.3।

0: मिर्ची, इट्स हॉट हॉट।
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।
0: बिरयानी की खुशबू, सेवई की स्वाद, ईद की सबको मुबारकबाद।

0: रेडी घोड़ी वोड़ी चढ़ गया मैं मुझको बेटी लक्की कर बात हमारी पक्की कर इतना क्या सोचे मुझे हाँ बोल के काम तो नक्की कर
1: Keep enjoying सेवई शवरमा बिरयानी एंड कबाब मिर्ची पे आप सुन रहे हैं गानों की ईदी जनाब।

सितारों की ईदी ऑन मिर्ची इट्स हॉट हॉट। बिरयानी की खुशबू, सेवई की स्वाद,

0: गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एहसास
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना क्या बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
3: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
4: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पहुंचा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
3: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो अभी तो बताओ।
4: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
3: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
4: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका घटो पहले भी बताओ ना मेरे को।
3: मैं तो बालकनी में खड़ा, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
4: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
3: कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
4: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
3: मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
4: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया है फोन।
3: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
4: आ गए वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
3: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
4: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार, उनसे समझ लो, जो रेड वेड मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है। मैं आप ऊपर ला रहा हूँ,
3: मैं बाद में मिलूंगा आपसे। यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
4: किसकी डेथ हो गई सर?
3: वो मेरे भाई की डेथ हो गई।
4: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स फार्म में, आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
3: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसा हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ पर रहे हो?
4: मैं कहाँ पर हूँ?
3: सॉरी, आप अभी कहाँ पर हो?
4: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
3: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, एक परेशान हूँ मैं।
4: आशीष, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
3: यार।
4: थैंक यू।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: Our business is our business, none of your business.
6: पर दीदी, our entertainment is your entertainment.
0: Qatar का number one radio station.
7: 89.6
0: FM, Mirchi 1. It's hot.
8: मुबारक ईद
0: मुबारक, गानों की ईदी, बिरयानी की खुशबू, सेवई की स्वाद, ईद की सबको मुबारकबाद।

0: सेवैयां खाइए और सुनते जाइए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एसॉन्ट
1: 89.6
0: बिरयानी की खुशबू से

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन।
1: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
2: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं।
3: हाय दिस इज आमिर खान।
4: सभी दर्शकों को मैं ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा।
5: इट्स हॉट।
1: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक।
2: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो।
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot. Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak. Gaano ki Eid on Mirchi. It's hot. Hot.
6: Yeah, here we go again. Authentic, original, and better than our right.

0: गानों की ईदी ऑन मिर्ची। इट्स हॉट हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
3: रजा मुराद, जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर द अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज द अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
4: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स्थ स्टैंडर्ड में मैं दो बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
3: वेल रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Bollywood,
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood,
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood,

0: सेवैयां खाइए और सुनते जाइए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची हिट्स ऑन।
1: ओ चन्नती कुड़ी, ओ चन्नती कुड़ी।

0: on Mirchi. It's hot. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana.
3: Ya bana.
2: Murga, murga. Nafis wala murga.
3: Mirchi, murga.
4: हेलो
5: मैडम, डिस्टरबेंस आ रही है क्या अभी?
4: हेलो, डिस्टरबेंस तो आ रही है, कौन बोल रहे?
5: एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। छोटू नीचे सीढ़ी सही पकड़ यार। हाँ नीचे सीढ़ी सही पकड़ ले।
4: हेलो,
5: एक सेकंड मैडम, एक सेकंड होल्ड करिए। मैडम डिस्टरबेंस अभी आ रही है?
4: कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे?
5: मैं खंबे पे से बोल रहा हूँ, लाइन मैन बोल रहा हूँ। आपके फोन की तार चेक कर रहा हूँ, डिस्टरबेंस इसलिए आ रही है, यहाँ पे कुछ तार मिले पड़े हैं आपके। अभी भी आ रही है?
4: आप पागल हो गए, मोबाइल पे फोन लगा रहे हैं और डिस्टरबेंस आ रही है।
5: हैं, मोबाइल पे
4: और क्या?
5: ये आप अभी मोबाइल से बात कर रही है?
4: तो आपको नहीं पता मोबाइल नंबर है?
5: आपने पहले क्यों नहीं बताया मोबाइल से बात कर रहे हैं?
4: आपको बताना चाहिए था ना
5: यार, आपको पहले मैडम बताना चाहिए था। यहाँ खंबे पे चढ़ा हुआ हूँ, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मैं डिस्टरबेंस ढूंढने जा रहा हूँ तार से।
4: आप खंबे पे चढ़े हुए हैं और मेरे को बोलते हैं डिस्टरबेंस आ रही है। दिमाग खराब?
5: ये दिमाग खराब की क्या बात है?
4: आपका दिमाग खराब?
5: आपका दिमाग, आपका फोन खराब है, मेरा दिमाग खराब है। पहले डिसाइड करिए।
4: अपना नाम बता, मैं तेरी कंपनी।
5: नवेद लिखिए, नवेद।
4: आ रही है
6: पायल में, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। डिस्टरबेंस भी गई, मैं भी चला जाऊंगा। मैंने आपका मुर्गा बनाया, छोड़ो सा मजाक कर दिया आपके साथ।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
2: मुबारक
7: ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक।
0: गानों की ईदी ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mochi. It's hot. Hot.
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
2: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची 1,
5: इट्स हॉट। मुबारक ईद मुबारक,
6: गानों की ईदी ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन।
1: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
2: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं।
3: हाय दिस सलमान खान और आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक।
1: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक।
2: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो।
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
4: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
5: Only on Mirchi. It's hot.
6: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिबलिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
7: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
8: वीडियो गेम्स हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
7: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
6: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
4: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
5: Only on Mirchi, it's hot.
9: Mubarak Eid, Mubarak. Mubarak Eid, Mubarak.
0: Gaano ki Eid, on Mirchi, it's hot, hot.
10: Yeah, here we go again. Authentic, original and better than our rivals.

जम के खाइए हैं अगर सेवई और बिरयानी तो कीप डांसिंग एंड फॉरगेट कैलोरीज की कहानी।

0: खाइए और सुनते जाइए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एफएम।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: जी फरमाइए। बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
1: आई रिसेंटली हैड अ चाइल्ड एंड आई थिंक आई एम डूइंग अ गुड जॉब रेजिंग हिम, पर मेरी सास वो मुझे ताने मारती ही रहती है, ये करो वो करो, मैं क्या करूं?
2: तो श्रीमती जी आप एक काम कीजिए, आप अपने बच्चे पे ध्यान दे रही है तो सासू माँ को कहें वो अपने बच्चे पे ध्यान दे।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Mirchi Ganuki Edi. Only on Mirchi. It's hot.

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
2: हेलो
3: हाय, अब अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना।
2: हाँ।
3: कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
4: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहें। नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
2: जी कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
4: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
2: मिसम नाम है।
4: मिसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
2: 1200 रुपए।
4: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दीजिए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
2: हाँ जी, 1 सितंबर 1980।
4: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
2: जी
4: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं?
2: क्लाइंट्स और गर्लफ्रेंड्स वगैरह। गर्लफ्रेंड्स वगैरह करता हूँ बातें।
4: गर्लफ्रेंड से ज्यादा करते हैं सर? किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
2: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
4: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
2: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
4: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर एक ही बार में पूछ लीजिए ना, आपको क्या पड़ी है उसके पीछे पढ़ने की? तो सर आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड।
2: सर
5: इतना गुस्सा मत होइए। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मुझे आपकी गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पहले, उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
2: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है।
5: नहीं सर, मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, मेरे साथ
2: पिटोगे,
5: मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
7: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, with the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
8: बसंतीन कुत्तों के सामने मत नाचना।
9: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
10: कैसे रुक सकता है?
11: Qatar का नंबर वन रेडियो स्टेशन
12: 89.6 89.6 89.6 FM Mirchi 1 It's hot
0: Mirchi gano ki ED Only on Mirchi It's hot

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 89.6
1: मिर्ची
0: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: ईद की पार्टी आपकी तरफ से और सेलिब्रेशन खास बनाने के लिए गानों की ईदी मिर्ची की तरफ से।
1: Authentic, original, and better than our rivals.

सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: घर दे कम ना रुकणगे ओ जिम विच फट्टे चक्कांगे।
2: You better watch us।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay.
1: फिर खाली हाथ चले आए. मेरी ईदी कहाँ है?
2: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं.
3: Hi, salam Qatar. This is Disha Patni. On 89.6 Mirchi online Qatar and wish you all a very happy Eid. Eid Mubarak.
1: अरे वाह, ये हुई ना बात. आपको भी ईद मुबारक.
2: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो.
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
5: Mirchi गानों की ईदी. Only on Mirchi. It's hot.

सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: हिमेश रेशमिया, अगर आप एक रेडियो जॉकी होते तो आप किस टॉपिक पर प्रोग्राम करते?
4: मैं डेफिनेटली लव का ही प्रोग्राम करना चाहता, जो प्रॉब्लम है कॉलर की और रोमांस में, लव में, छोटी छोटी बातें, वो कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
3: हिमेश रेशमिया, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 89.6
0: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: भाई मानजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
2: अथॉरिटी से बनवाया था, शेखराय से।
1: अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
2: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
1: किस दलाल से बनवाया था? अपने नाम याद है उसका?
2: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका।
1: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: तो कोई बात नहीं होती, कैंसिल हम दलाल को, दलाल को पकड़ेंगे सर, हमें क्यों पकड़ेंगे?
1: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
2: तो बनाकर तो उसने था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
1: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
2: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
1: नहीं, मेरे को दिए आपने?
2: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
1: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया है।
2: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा लो।
1: अरे उन्होंने क्या कहा था यार, उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा, जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चला कट जाएगा। ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है यार? उस वक्त नहीं सोचा था जब हम बैठे हुए यहाँ पे आपकी सेवा के लिए, आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
2: सर मैं दलाल से बात कर रहा हूँ, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊंगा?
1: कैंसिल मैं क्या जानूँ, उसे बनवाया था, उससे पूछे भाई।
2: जिसने ज्यादा कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने ज्यादा कुछ कहा नहीं, हमको कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा बस ठीक है, चल जाएगा, सबका बनाते हैं, कितने सालों से बना रहे हैं।
1: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
2: हाँ जी।
1: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे, मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा है? मैंने तो बस सूचित करना था, करना मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: गलती होगी साहब जी,
1: गलती होगी साहब जी। कान पकड़
2: पकड़ ले,
1: मेरे को दिख रहा है यहाँ से, मेरे को उल्लू बना रहा है यार, इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकड़ू को। हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया। अब भाई ये जो दलाल है वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस, सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
5: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
3: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
6: बार बार,
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
3: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: मिर्ची गानों की ईदी, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: की पार्टी आपकी तरफ से और सेलिब्रेशन खास बनाने के लिए गानों की ईदी मिर्ची की तरफ से।
1: दूध उबालोगे, दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 89.6 It's hot
0: Mirchi Ganuki Idi Only on Mirchi It's hot

सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 89.6 89.6 मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 89.6 मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हर दे कम ना रुकणगे ओ जम विच फट्टे चकांगे।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the
1: iPay. Arz kiya hai.
2: Irshad.

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल सीधा नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5 10 15 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईपी स्मॉलर फीस बिगर स्माइल्स. TNC अप्लाई.
1: फिर खाली हाथ चले आए. मेरी ईदी कहाँ है?
2: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं.
3: नमस्कार, दिस इज रवीना टंडन. आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद.
1: अरे वाह, ये हुई ना बात. आपको भी ईद मुबारक.
2: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो.
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
5: मिर्ची गानों की ईदी. ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: ईद की पार्टी आपकी तरफ से और सेलिब्रेशन खास बनाने के लिए दानों की ईदी मिर्ची की तरफ से।
1: Yeah, the meat bros.

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 89.6 बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
4: शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय।
5: वो उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश जोश जोश।
4: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
5: सलमान खान एंड सैफ अली खान, बहुत उन्होंने कौन से पिक्चर में भाई।
4: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होंगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
5: मैं मुझे नहीं पता।
4: हम साथ
5: कौन
4: साथ
5: सी है? ओ हाँ, हम साथ साथ है। और
4: नाना पाटेकर कटरीना कैफ,
5: ये भाई बहन थे। वेलकम।
3: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मैं मराठी हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड बंगाली है, उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कैसे समझाऊं?
1: अरे कोचू, बंगाली है तो बंगाली में समझाना।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे अलकट हंस।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आशा करती हूँ आपका ईद का जो फेस्टिव्स है वो बहुत अमेजिंग जा रहे हैं। मिर्ची ईशा आ गई है वीकेंड वाइब्स लेके, जहाँ पे आपको बताएगी वो सारी स्टोरीज, सारे इवेंट, सारे एग्जीबिशन, सब कुछ कवर करेगी ऑन माय शो, जहाँ पे हम बात करते हैं वीकेंड्स की। और अभी इस समय जैसे ईद की सेलिब्रेशंस जारी हैं, चल रही हैं, तो बस उसी से रिलेटेड आपसे वो सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी हियर ऑन माय शो। बस उसके लिए करना गया मेरे साथ बने रहना, यानी कि मिर्ची ईशा के साथ, ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन एट्स ऑल।
0: मिर्ची गानों की ईदी, Only on Mirchi, it's hot.

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो
2: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
1: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
2: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पहुंचा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
1: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो अभी तो बताओ।
2: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
1: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
2: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका घटो पहले भी बताओ ना मेरे को।
1: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
2: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकते, इतनी चौड़ी तो रोड होगी।
1: कौन कौन आ सकते, किसकी जिप्सी?
2: एक तो समन है आपके नाम का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
1: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
2: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया है फोन।
1: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
2: आ गए वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
1: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
2: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो जो रेड वेड मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है। मैं आप पहला रहा हूँ,
1: मैं बाद में मिलूंगा आपसे। यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
2: किसकी डेथ हो गई सर?
1: मेरे भाई की डेथ हो गई।
2: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स फार्म में आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
1: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसे हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ पर रहे हो?
2: मैं कहाँ पर हूँ,
1: सॉरी आप अभी कहाँ पर हो?
2: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
1: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, परेशान हूँ मैं। हर साल का रिटर्न वेटर्न सब फाइल कर देता हूँ वो अभी।
2: आशीष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
1: यार।
2: थैंक यू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, with the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamond

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है।

मनाओ ईद का जश्न गानों की ईदी के संग ओनली ऑन मिर्ची।

0: जा बेबी मुखड़ा दिखा जा, बिना पीते ही मुझे तो यारो चढ़ने लगी।
1: ईद की वाइब सेट हो गई है, मिर्ची पर गानों की ईदी जो मिल रही है।
2: गुरु। बोहिमिया।

सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 89.6 89.6 मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: कतर में हया बया सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं बल्कि बच्चों परिवारों और संस्कृति से जुड़ा एक बहुत प्यारा ट्रेडिशनल एहसास माना जाता है। दोस्तों कतर में होने वाला हया बया होता है ठीक ईद अल अदा से एक दिन पहले, जहां पे बच्चियां ट्रेडिशनल कपड़े डालकर फैमिली के साथ जाती हैं सी साइड, जहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चियाँ हाथों में हरे रंग के पौधे का गमला लेकर निकलती हैं सी साइड की तरफ। गाना हया बया गाने के बाद उसको फेंकती हैं सी में। दैट इज अ ट्रेडिशन जो फॉलो करा जा रहा है बहुत सालों पहले से अब तक, एंड ये ट्रेडिशन बेसिकली ईद अल अदा से पहले किया जाता है। और ये मौका कि हम किस तरीके से अपने रिचुअल अपनी रूट्स के साथ कितना ज्यादा प्यार करते हैं और जुड़े हैं। और हया बया हमें याद दिलाता है कि ईद सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि कल्चर और साथ में रहना, बच्चों की मुस्कुराहटों का खूबसूरत संगम है। बस ऐसी ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए सुनते रहिए मुझे यानी कि मिर्ची ईशा को ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।
0: मिर्ची गानों की ईदी Only on Mirchi, it's hot.

सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 89.6 89.6 मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स

0: रहे गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एक ऐसी जगह जहां पे आपको ईद की एक्टिविटीज का मिलेगा भरमार। बात कर रही हूँ DFC यानी कि दोहा फेस्टिव सिटी की, जहाँ पे होने वाली हैं बहुत सारी एक्टिविटीज। एक ऐसी जगह जहाँ पे तरह तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट फेस पेंटिंग, अरबिक कैलीग्राफी, स्टोरी टेलिंग या पोएट्री सेशंस, हीना एप्लीकेशन, ट्रेडिशनल गेम्स, अरबिक कॉफी, स्विंग वर्कशॉप, पियानो परफॉर्मेंसेज, लाइव परफॉर्मेंसेज। ओ माई गॉड, इतना कुछ मिल रहा है आपको DFC में। तो भाई, ईद की सेलिब्रेशन है, कुछ तो खास बनता ही है ना। तो इतनी सारी एक्टिविटीज के साथ आपको जाना चाहिए DFC। एंट्री टोटली फ्री है एंड अंटिल 2 जून तक है ये। तो भाई 2 जून तक चल रहा है कि आई कैन जा सकते हैं इन ईद की छुट्टियों में, खुशियां बांटी अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ। और इस इवेंट को भूलिएगा मत, जाइएगा और एंजॉय करिएगा। स्टे ट्यून विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।
0: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हर दे कम ना रुकन के ओ जम विच फटे चक्का।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000-1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.
1: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
2: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं.
3: हाय दोस्तों, मैं हूँ मीका सिंह और मेरी तरफ से आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं.
1: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक.
2: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो.
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
4: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: कतर की अगर आप लोकेशंस चेक करोगे ना, कभी कभी फीलिंग आता है या आप यूरोप में पहुंच गए, या आप लंदन में पहुंच गए, या आप कहीं और हो। इतनी खूबसूरत जगहें हैं कि क्या ही कहने। उसमें से मेरी एक फेवरेट है कनत खातिर, जी हाँ, द पर्ल दोहा, जहाँ पे आपको एक बहुत खूबसूरत मार्केट लगी मिलेगी। मैं बात कर रही हूँ टोरबा मार्केट की, जो ऑन द ब्रिज है, जहाँ पे आपको मिलेंगी वो सब खूबसूरत चीजें, चाहे वो हैंडक्राफ्टेड हो, चाहे कुछ बैग्स हो, फ्रूट स्टॉल्स एंड वेजिटेबल स्टॉल्स भी आपको मिलेंगे। एकदम आपको वाइब देगा, नेचर के साथ शॉपिंग करने की जो वाइब होगी ना, वो एकदम टोपी में रिलीज करेगी आप। इसका टाइमिंग मैं आपको बता दूं कि ये 5 बजे से लेके रात को 9 बजे तक होती है। थोड़ा मौसम भी ठंडा हो जाता है। उसके अलावा बता दूं, ये 30 मई तक है, तो आप आराम से जा सकते हैं। किसी भी दिन जाइए और एंजॉय करिए फैमिली के साथ। एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 101.7।
0: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: ईद की खुशियाँ मनाओ और मिर्ची की तरफ से कानों की ईदी ले जाओ।
1: एक कोने में था बैठा जब मुझे वो दिखी थी, वो सबसे अलग थी, वो सबसे हंसी, आंखें मेरी फिर उसकी आंखों से जमेली, एक बारी दो बारी फिर निकली हंसी, एक हाथ हवा विच दूजे च गिलास, ते मेनू नी पता सी गिलास च की, बट हौली हौली लक नू घुमा के नचदे लगे सो सेक्सी।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है। What did you steal in your childhood?
4: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे। मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसके चॉकलेट्स खत्म कर दिए कभी, और आज तक बोला नहीं कि वो मैं था।
3: What a way to confess, अभय देओल। अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज ए चाइल्ड। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood,
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood,

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यारो ईद मुबारक, ओ यारो ईद मुबारक। मिर्ची ईशा आ चुकी है शाम शानदार में आपके साथ बहुत सारी बातें करने और बहुत से इवेंट्स बताने। जी हाँ, अभी ईद का मौका है और बहुत सारी सेलिब्रेशंस कतर में चल रही हैं। और उसके तहत आपको एक और जगह बता दूं, पर्ल आइलैंड एंड गिवान आइलैंड, जहाँ पे होने वाली है ईद अल अदा की बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन। क्योंकि सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो एसी है, आउटडोर भी एसी है गिवान आइलैंड, जहाँ पे आप आराम से बिना गर्मी बोले इंजॉय कर सकते हैं इवेंट को। आउटडोर एक्टिविटीज़ में जहाँ आपको मिलेंगी बहुत सारी किड्स क्यूरेटेड एक्टिविटीज़, जहाँ पे हीना आर्ट के अलावा आपको लाइव परफॉर्मेंसेज मिल सकती हैं, ट्रेडिशनल अर्धा, रोमिंग मास्कट्स एंड चिल्ड्रंस की स्टेज परफॉर्मेंसेज मिल सकती हैं। और क्या चाहिए, इसके अलावा ट्रेडिशनल बहुत सी कतरी एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आपको बस जाना है और इंजॉय करना है, बच्चों को लेके जाइए और इस ईद इंजॉय करिए। एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।
0: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: हेलो
2: मैडम, डिस्टरबेंस आ रही है क्या अभी?
1: हेलो, डिस्टरबेंस तो आ रही है, कौन बोल रहे?
2: एक सेकंड रुकिए। छोटू, नीचे सीढ़ी सही पकड़ यार। हाँ, नीचे सीढ़ी सही पकड़ ले।
1: हेलो,
2: एक सेकंड मैडम होल्ड करिए। मैडम, डिस्टरबेंस अभी आ रही है?
1: कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मैं खंबे पे से बोल रहा हूँ, लाइन मैन बोल रहा हूँ। आपके फोन की तार चेक कर रहा हूँ, डिस्टरबेंस इसलिए आ रही है, यहाँ पे कुछ तार मिले पड़े हैं आपके। अभी भी आ रही है?
1: आप पागल हो गए? मोबाइल पे फोन लगा रहे हैं और डिस्टरबेंस आ रही है।
2: हैं, मोबाइल पे?
1: और क्या,
2: ये आप अभी मोबाइल से बात कर रही है?
1: तो आपको नहीं पता मोबाइल नंबर है?
2: आपने पहले क्यों नहीं बताया मोबाइल से बात कर रहे हैं?
1: आपको बताना चाहिए था ना
2: यार, आपको पहले मैडम बताना चाहिए था। यार, खंबे पे चढ़ा हुआ हूँ, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मैं डिस्टरबेंस ढूंढने जा रहा हूँ तार से।
1: आप खंबे पे चढ़े हुए हैं और मेरे को बोलते डिस्टरबेंस आ रही है? दिमाग खराब?
2: ये दिमाग खराब की क्या बात है?
1: आपका दिमाग खराब?
2: आपका दिमाग? आपका फोन खराब है, मेरा दिमाग खराब है? पहले डिसाइड करिए।
1: अपना नाम बता, मैं तेरी कंपनी।
2: नवेद लिखिए, नवेद।
1: आ रही है?
3: पायल, में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। डिस्टरबेंस भी गई, मैं भी चला जाऊंगा। मैंने आपका मुर्गा बनाया, छोड़ो, सा मजाक कर दिया आपके साथ।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष।
4: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
6: मुबारक ईद मुबारक,
4: गानों की ईदी ऑन मिर्ची इट्स हॉट। बिरयानी की खुशबू, सेवई की स्वाद, ईद की सबको मुबारकबाद।

सितारों की ईदी ऑन मिर्ची इट्स हॉट हॉट। बिरयानी की खुशबू, सेवई की स्वाद, ईद की सबको मुबारकबाद।

0: एंजॉयिंग सेवई शवरमा बिरयानी एंड कबाब मिर्ची पे आप सुन रहे हैं गानों की ईदी जनाब।
1: आगे लगे आगे लगे।

0: सुनते जाइए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एसॉट।
1: देखिए, अगर आपको भी अपना शौक है ना कि अपनी दिल की धड़कनों को बढ़ाना और एकदम डर जाना, बस आपके लिए एक ऐसा ही इवेंट लाई हूँ। मैं बात कर रही हूँ फंटाना की। हाल ही में जब मैं इस टेंट में गई और देखा मैंने फंटाना, इट वाज अमेजिंग रियली। मैं OMG वाला मेरा फेस बन चुका था। आई वाज लाइक स्टंड बाय ऑल द स्टंट्स दे हैव डन। उसके अलावा मैं ये कहूँगी कि अगर आप प्लान कर रहे हैं ईद की छुट्टियों में जाने के लिए, तो जल्दी जाइए। 31 मई तक है ये, हयात प्लाजा में है। एंड ऑल्सो आपको बता दूँ कि द बेस्ट पार्ट वॉज द यू नो वो एक्रोबैट्स जितने भी थे, दे वर सुपर टैलेंटेड, दे ऑल वर सुपर टैलेंटेड। लेकिन हाँ, बात यह है कि अगर आप कुछ नई चीज देखना चाहते हैं, अगर आपको भी मजा आता है ये एडवेंचरस एंड स्टंटबाजी देख के, तो भाई जरूर जाइए फंटाना देखने। एंड फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 101.8।

It's hot. Hot. बिरयानी की खुशबू, सेवई की स्वाद, ईद

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.
1: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
2: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं.
3: Hi Mirchi listeners, this is Jacqueline Fernandez. Wishing all of you guys a very very Eid Mubarak. It's hot.
1: अरे वाह, ये हुई ना बात. आपको भी ईद मुबारक.
2: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो.
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
5: मुबारक ईद मुबारक
4: गानों की ईदी ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: सेवैया खाइए और सुनते जाइए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एफ एम
1: 89.6
0: It's hot, hot. बिरयानी की खुशबू सेवई की स्वाद ईद की सबको मुबारकबाद
2: हर घड़ी हर पहर मुझे

0: की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एफएम।
1: बचपन में मम्मी बोला करती थी कि टाइम इज मनी, बट अब समझ में आता है कि टाइम इज मनी क्यों कहा जाता था। क्योंकि अगर आप टाइम पे हर चीज नहीं करोगे तो टाइम आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो आपको कुछ लाइफ में हासिल नहीं करने देगा। तो भाई टाइम मैनेजमेंट करके रहना बहुत जरूरी है, और उसी के साथ मुझे भी समझ में आ रहा है कि समय हो गया है आप लोगों से अलविदा कहने का। तो करती हूँ टाटा बाय बाय, स्टे ट्यून विद अस ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
2: मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक,
0: गानों की ईदी ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: रजा मुराद, जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर द अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज द अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
3: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स्थ स्टैंडर्ड में मैं दो बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
2: वेल, रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood,
1: only on Mirchi, it's hot.

0: एंजॉयिंग सेवई शवरमा बिरयानी एंड कबाब वेट्री पे आप सुन रहे हैं गानों की ईदी जनाब।
1: अरे यार कोई एसी चला दो यार।
2: सही है सही है।
3: बाकी सारी फेक लगे देख के तुझको ब्रेक लगे दूर दूर से ठीक है रानी पास आऊं तो सेक लगे
4: पारा इतना हाई हुआ कि धर्म मीटर

0: गले लगा के देख।
1: जम के खाइए है अगर सेवई और बिरयानी तो कीप डांसिंग एंड फॉरगेट कैलोरीज की कहानी।

0: किसानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एसॉन्ट।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: मेरे हस्बैंड ऑफिस से रोज लेट आते हैं और खाना खा के सीधा सो जाते हैं, क्या करूं?
2: अरे मैडम, उनको बोलो खाना खा के सीधा ना सोए, बाएं साइड सोए, उससे क्या हेल्थ भी अच्छी रहेगी।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
4: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
5: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं।
6: हाय दोस्तों, मैं हूँ मिका सिंह और मेरी तरफ से आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
4: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक।
5: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो।
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot. It's hot.

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
3: Aajkal everything in Bollywood is about the opening weekend. Songs, trailers, dialogues, even emotions. सब कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है कि फ्राइडे से संडे तक इंटरनेट पे नॉइज बने रहे, लेकिन उसके बाद इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट रिलीज। और इस रेस में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज खो दी है, रिपीट वैल्यू। वो गाने जो आदमी खुद ढूंढ के वापस सुनता था, वो फिल्म्स जिनके सीन्स लोग स्कूल और ऑफिस में रिपीट करते थे, वो डायलॉग्स जो कल्चर का हिस्सा बन जाते थे। आज कॉन्टेंट ज्यादा है लेकिन कनेक्शन कम। लेकिन फिर भी हर हफ्ते इस ओवरलोड में कुछ आवाजें, कुछ फिल्म्स और कुछ मोमेंट्स ऐसे आ जाते हैं जो याद दिलाते हैं कि बॉलीवुड अभी भी सरप्राइज कर सकता है। तो देन द मिर्ची टॉप 20 स्टार्ट्स राइट नाउ। मैं हूं सुरेन सुंदरम एंड सबसे पहले एक एल्बम जो इस पूरे साल की सबसे ब्रिलियंट एल्बम में से एक है। ना इसमें डांस ट्रैक्स मिलेंगे, ना फिलर सॉन्ग्स, ना वो गाने जिन्हें आप एक बार सुन के भूल जाए। इस एल्बम पे मेहनत गई है, चांद मेरा दिल, सचिन जिगर की मेहनत। एंड नंबर 20 पर है खासियत बाय राघव चैतन्य और जोनीता गांधी। खत्म होने के बाद भी फिर सुनने का मन ना करे तो मेरा नाम बदल देना।
4: नंबर 20।

नंबर 19 पे रूप दी रानी फ्रॉम पति पत्नी और वो दो। ऑनेस्टली मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूं कि गाना चार्ट्स पे स्लाइड करके 19 पे पहुंच गया है, चार स्पॉट्स नीचे। और शायद अगले हफ्ते ये गाना कंप्लीटली आउट भी हो जाए, क्योंकि कुछ गाने सिर्फ नॉस्टैल्जिया का कॉस्ट्यूम पहन के आते हैं, सोल नहीं। आप उन्हें सुनते वक्त कॉन्स्टेंटली ओरिजिनल गाने को याद करते हैं, एंड फिर अचानक नंबर 18 पे एक ऐसा कोलैब एंट्री लेता है जो थियोरेटिकली एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था, विशाल मिश्रा इन एन अनुराग कश्यप फिल्म कॉल्ड बंदर। और ये गाना क्यों मजा आ रहा है यार, क्या स्ट्रेंज हॉन्टिंग ट्रैक है ये। जब पूरी इंडस्ट्री एल्गोरिथम फ्रेंडली हुक्स, ढोल ड्रॉप, स्टेडियम कोरसेस के पीछे भाग रही है, दिस सॉन्ग जस्ट विस्पर्स, बस धीरे से अंदर पहुंच जाता है। No loud payoff, no screaming hook, बस माहौल, the atmosphere, वो लेट नाइट loneliness, वो अकेलापन। और विशाल मिश्रा की आवाज, बंदा गा नहीं रहा, बंदा अपने दिल को समझा रहा है, रोका था कब से, संभाला था कब से। The writing itself feels tired, in a good way, it's exhausted, जैसे कोई आदमी खुद को कन्विंस करते करते हार गया हो। और प्रोडक्शन भी देखो, मिनिमल percussion, ambient synths, टाइनी अकूस्टिक गिटार फ्रेजेस जो फ्लोट करते हैं जैसे ख्याल पूरे ना हो, अनफिनिश्ड थॉट्स। ये गाना परफॉर्म नहीं करता, हॉन्ट करता है। एंड सबसे स्मार्ट चॉइस, विशाल नेवर बेल्ट्स द लाइन क्यों मजा आ रहा है, वो उसे आहिस्ते कहता है, लाइक अ मैन एम्बैरस्ड बट ही इज फॉलिंग इन लव अगेन। इट्स ब्यूटिफुल रिस्ट्रेंट एंड इट शॉक्स मी कि अनुराग कश्यप के सिनेमा में ऐसा इमोशनली डैमेज रोमांस पिट हो सकता था। This is purely mood over melody, texture over trend. Gaana number 18 is hafte kyun maza aa raha hai from Bandar. Number 18.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
2: हेलो
3: हाय, अब अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
4: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहें।
5: नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
2: कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
5: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
2: मीसम नाम है।
5: मीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
2: 1200 रुपए।
5: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दीजिए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
2: हाँ जी, 1 सितंबर 1980।
5: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
2: जी
5: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं?
2: क्लाइंट्स और गर्लफ्रेंड्स वगैरह।
5: गर्लफ्रेंड से ज्यादा करते हैं सर? किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
2: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
5: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
2: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
5: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर एक ही बार में पूछ लीजिए ना, आपको क्या पड़ी है उसके पीछे पढ़ने की? तो सर आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड।
2: सर
6: इतना गुस्सा मत होइए। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मुझे आपकी गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पहले, उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
2: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे लगता है।
6: नहीं सर, मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, मेरे साथ
2: पिटोगे
6: मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को
7: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
8: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, with the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
9: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
10: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
11: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
12: Qatar का number one radio station.
13: 89.6 FM Mirchi 1. It's hot.
0: Surin ke saath only on Mirchi. It's hot.
14: Number 70.
15: It's missing.

0: नंबर 17 पे मस्कारा फ्रॉम मैं वापस आऊंगा, रहमान साहब का म्यूजिक, इम्तियाज अली की दुनिया, और स्क्रीन पे दिलजीत दोसांझ, वेदांग रैना और शर्वरी वाघ। एंड ऑब्वियसली फिल्म रिलीज से पहले इंटरव्यूज तो होते ही हैं, आफ्टर ऑल प्रमोशन साइकिल का हिस्सा है। तो वेदांग और शर्वरी से पूछा गया, दिलजीत दोसांझ की कौन सी क्वालिटी आप लेना चाहोगे, और दोनों का आंसर ऑलमोस्ट एक ही इमोशनल यूनिवर्स में आया।
1: आई थिंक जस्ट हिज ऑनेस्ट आईज, लाइक ऑनेस्टी, लाइक हिज आईज आर जस्ट टू ऑनेस्ट। आई थिंक वो एक चीज होती है जो आप हमेशा चाहते हो एज एन एक्टर, टू हैव ऑनेस्टी इन योर आईज, एंड वो उनके साथ बहुत आसानी से हो जाता है। मे बी बिकॉज इट्स जस्ट द पर्सन दैट ही इज, एंड आई थिंक ही जस्ट एमिट्स दैट काइंड ऑफ पॉजिटिविटी और द काइंड ऑफ लव एंड अफेक्शन। बट यू नो, लाइक वो होता है ना कि कोई कुछ लोग अपनी आंखों से स्माइल करते हैं, आई थिंक दैट्स इन हिज केस, एंड सो आई थिंक वो अपनी आंखों से ही इज एबल टू कम्युनिकेट विद सो मच ऑनेस्टी दैट आई डू होप दैट समडे आई एम एबल टू लाइक लर्न दैट वैल्यू।
2: एज अ पर्सन मैं उनको इतना जानता नहीं है और इतना मौका भी नहीं मिला शूट करने के लिए, बट ही जस्ट कम्स अक्रॉस एज अ पॉजिटिव और ऑनेस्ट पर्सन, और वो उनकी परफॉर्मेंस में दिखता है, विच इज अ वेरी यूनिक थिंग आई फील, एंड इट्स सच अ ग्रेट थिंग कि आप जैसे काइंड ऑफ रियल लाइफ में वो काइंड ऑफ शोज ऑन स्क्रीन ऑल्सो, एंड वो आई मीन वो बहुत ही कमाल के एक्टर।
0: मैं जेन्युइनली कंफ्यूज्ड हूँ, ये ऑनेस्टी इन द आईज एग्जैक्टली मेजर कैसे की जाती है? क्या FTII में अब अलग सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, लाइक मेथड एक्टिंग, कैमरा ब्लॉकिंग, आंखों की ऑनेस्टी? मुझे समझना है यार, टॉक अबाउट द क्राफ्ट ना, बोलो कि बंदा सीन प्रेपरेशन बहुत डेंजरस करता है, बोलो इम्प्रोवाइजेशन इनसेन है, बोलो रिदम समझता है, बोलो कैमरा अवेयरनेस नेक्स्ट लेवल है दिलजीत की, लेकिन नहीं, इंडियन एक्टर्स इंटरव्यूज में अचानक फिलोसोफर्स बन जाते हैं, सब ग्राउंडेड, सब ग्रेटफुल, सब हम्बल्ड। ये कोई नहीं बोलता, हाँ यार पहले दिन फट गई थी, हाँ यार सीन समझने में थोड़ा टाइम लगा, एवरीथिंग साउंड सो PR फिल्टर्ड, सो PR सेफ नाउ, और ऑडियंस को ये पॉलिश फील हो जाती है। इसलिए जब कोई फिल्म या परफॉर्मेंस जेन्युइनली रॉ लगती है ना, लोग उसके साथ इंस्टेंटली कनेक्ट कर जाते हैं, और इस वक्त बॉलीवुड में अगर कोई फिल्म रॉ कन्विक्शन पे चल रही है तो वो है धुरंधर। ना फेक सोफिस्टिकेशन, ना ओवरथिंकिंग, बस सीधा इमोशन। गाना नंबर 16 इस हफ्ते है जैस्मिन सैंडलर्स और सतिंदर सरताज की आवाज में, जाइए सजना। नंबर 16।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: घर दे कम ना रुकणगे ओ जिम विच फट्टे चकांगे।
2: यू बेटर वॉच हर शाइन।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay.
1: Arz kiya hai.
2: Irshad.

0: नंबर 15 पे था चांद मेरा दिल। एंड सच में ये फिल्म मुझे एग्जैक्टली इंस्टाग्राम रील्स वाली फील देती है। इट्स प्रिटी, इट्स रोमांटिक, सॉफ्ट लाइटिंग है, गुड लुकिंग लोग हैं, आप देखते हो, एंजॉय भी करते हो और एक मिनट बाद याद ही नहीं रहता कि क्या देखा था। लेकिन अब जो आ रहा है ना, उसमें प्रॉब्लम मेमोरी की नहीं है, प्रॉब्लम कंपैरिजन की है। इस हफ्ते का गाना नंबर 14 है फ्रॉम द मूवी है जवानी तो इश्क होना है एंड द सॉन्ग इज चुनरी चुनरी। नाउ टेक्निकली ये 2026 वर्जन है और सलमान खान एंड सुष्मिता सेन का वो आइकॉनिक ओरिजिनल सॉन्ग। लेकिन मैंने ये गाना बार बार सुना, सच में कोशिश की वो सेम इमोशन फील करने की, वो सेम मैडनेस, वो सेम नशा, बट नो, ये गाना रीमिक्स लगता है एंड वो भी डेंजरस टाइप का रीमिक्स, वो जो हर 20 सेकंड बाद आपको ओरिजिनल की याद दिलाता है। एंड यू नो सबसे बड़ा मिस क्या है, अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज। बस कुछ गाने सिर्फ कॉम्पोजिशंस नहीं होती, वो आवाजों की केमिस्ट्री होती है और उस ओरिजिनल में जो प्लेफुलनेस थी ना वो मिसिंग है यार। एंड शॉक इस बात का है कि मेरा भाई वरुण धवन म्यूजिक समझता है, लाइक जेन्युइनली समझता है। हमने कितनी बार म्यूजिक के बारे में बातें की हैं यार, वरुण मुझे पहले ही बता देता था ये गाना ऑसम है ब्रो, जरूर पॉपुलर होगा। उसने मुझे समझावा पे ये बात बोली थी,
1: मैं तैनू समझावा की ना तेरे बिना लगदा जी।
0: उसने मुझे सुन साथिया पे ये बात बोली थी,

0: उसने मुझे जीना जीना पे बात बोली थी।
1: ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम।
0: और तीनों बार वो सही निकला, इसलिए मुझे जेन्युइनली सरप्राइज होता है कि उसने चुनरी चुनरी का ये वर्जन आखिर पास कैसे कर दिया, क्योंकि YouTube कमेंट्स भी कुछ ऐसा ही बोल रहे हैं जो मैं फील कर रहा हूं। दिस डजंट फील रीइमेजिन्ड, इट फील्स लाइक अ बूटलेग वर्जन। लेकिन चलिए, मे बी ऑडियंस मुझे गलत प्रूव कर देगी। इस हफ्ते का गाना नंबर 14 इज द डेब्यूइंग चुनरी चुनरी फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है।
2: नंबर 14।

0: Kulin ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
1: Bollywood bol dal. Bollywood, Bollywood, Bollywood bol dal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: हिमेश रेशमिया, अगर आप एक रेडियो जॉकी होते तो आप किस टॉपिक पर प्रोग्राम करते?
4: मैं डेफिनेटली लव का ही प्रोग्राम करना चाहता, जो प्रॉब्लम है कॉलर की और रोमांस में, लव में छोटी छोटी बातें, वो कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
3: हिमेश रेशमिया, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल।
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
0: Only on Mirchi. It's hot.
5: एकदम सही सुना तुमने, किम्स हेल्थ पर मिल रहा है फ्री डेंटल कंसल्टेशन। कोई पेमेंट नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, बस पहले अपने डेंटल इश्यूज पहचानो, ट्रीटमेंट डिसाइड बाद में करो।
6: लिमिटेड ऑफर वैलिड फॉर जनरल एंड स्पेशलाइज्ड बोथ। बुक करो अपना फ्री डेंटल चेकअप सिर्फ किम्स हेल्थ पर।
0: Only on Mirchi. It's hot.
7: Number 13. Oh, yeah.

नंबर 12 पर था हमने वही दिल लगाया फ्रॉम पति पत्नी और वो दो। और मुझे याद है मैंने पिछले हफ्ते ही आपको ये बताया था, ये पहले इंटरनेट का गाना था, फिर रील्स का गाना बना, फिर रॉ इमोशन का गाना बना एंड बॉलीवुड में इन सब के बाद आया। ऑनेस्टली ये चीज मुझे हमेशा एक इंटरेस्टिंग बात याद दिलाती है। फिल्म इंडस्ट्री में दो टाइप के डायरेक्टर्स होते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी, वो जिनके लिए म्यूजिक बस रन टाइम होता है, आए गाना डाल दो, वेडिंग ट्रैक चाहिए मुझे, यहाँ एक ब्रेकअप वाला गाना होना चाहिए, बस कहानी से कनेक्ट हो या ना हो, इट डजंट मैटर। एंड देन यू गॉट द सेकंड कैटेगरी, वो डायरेक्टर्स जो म्यूजिक को फिल्म की रूह समझते हैं, जो कंपोजर्स के साथ बैठते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, स्क्रैच वर्जन्स रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है अ ग्रेट सॉन्ग फिल्म को सिर्फ प्रमोट नहीं करता, वो उसे इमॉर्टल बना देता है। विशाल शेखर ने एक बार मुझे बताया था कि कैसे सिद्धार्थ आनंद अपनी फिल्म्स के म्यूजिक को लेकर ऑब्सेस करते हैं। एंड ऑनेस्टली वो दिखता भी है, सलाम नमस्ते, बचना हसीनो, अनजाना अनजानी, बैंग बैंग, बंदा रोमांस को सिर्फ विजुअल से नहीं म्यूजिक से स्टेज करता है। और जब रोमांटिक सॉन्ग्स की बात आती है ना, सिद्धार्थ आनंद जेन्युइनली समझते हैं दैट लॉन्गिंग का टेक्सचर क्या होता है, डिजायर का रिदम क्या होता है। इसलिए इन एन एक्शन थ्रिलर लाइक बैंग बैंग वहां भी मेहरबान जैसा एक गाना क्रिएट कर दिया। एंड यू नो व्हाट द फनी थिंग इज, फिल्म के एक्शन सीन्स लोग शायद भूल गए होंगे लेकिन ये गाना उन्हें अब भी याद है। रिसेंटली शिल्पा राव ने इसका एक अनप्लग वर्जन अपने सोशल्स पे अपलोड किया था और यार क्या सॉफ्टनेस है उस परफॉर्मेंस में।

0: It's just beautiful, isn't it? Now, विशाल मिश्रा का दीवानियत इस हफ्ते नंबर 11 पर है, लेकिन सिद्धार्थ आनंद की दीवानियत पूरी करनी जरूरी है. This is my special request. इसे पूरा सुनिएगा. From Bang Bang, this is मेहरबान by शिल्पा राव and Ash King.
1: Special request song.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक,
2: गानों की ईदी ऑन मिर्ची इट्स हॉट हॉट। बिरयानी की खुशबू, सेवई की स्वाद, ईद की सबको मुबारकबाद।

0: वालों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एसॉट 89.6
1: मिर्ची मुबारक ईद मुबारक
0: गानों की ईदी ऑन मिर्ची बिरयानी की खुशबू सेवई की स्वाद ईद की

0: सुनते जाइए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एसॉन्ट
1: 89.6 89.6 मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: घर दे कम ना रुकन गे ओ जिम विच फट्टे चकांगे।
2: यू बेटर वॉच हर शाइन।

89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay, best rate, no stress. iPay wallet का भरोसा, download कीजिए आज ही iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do that.

मामा शुका नंबर 10 पे इस हफ्ते फुल मेडिटेरेनियन केओस लेकर डेब्यू कर रहा है माशुका फ्रॉम कॉकटेल 2। शाहिद कपूर इज इन फुल चार्मिंग रोग मोड, कृति सैनन वो एफर्टलेस ग्लैमर एनर्जी लेके आ रही है एंड प्रीतम दा वंस अगेन प्रूविंग कि वो हुक बनाना भूले नहीं है। लेकिन इंटरनेट को ऑब्वियसली मेलोडी से ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी पसंद है। अब पूरा सोशल मीडिया इस बात पे लड़ रहा है कि माशुका सपोजिटली एक 32 साल पुराने 32 years ago इटालियन सॉन्ग से इंस्पायर्ड है।

0: और फिर वही ओल्ड कमेंट्स फिर निकल आए, प्रीतम हैज कॉपीड अगेन। देखिए मैं यहाँ प्रीतम दा की साइड पर हूँ। हाँ, उनका पास थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल, थोड़ा सा चेकर्ड रहा है, नोबडी इज डिनाइंग दैट, लेकिन ये सिचुएशन मुझे थोड़ी अलग लगती है। महमूद कोई रैंडम वोकलिस्ट नहीं है, बंदा ऑफिशियल कोलैबोरेटर है इस गाने पे। एंड भाई नाम महमूद है बट ही इज नॉट एन इंडियन, ही इज इटालियन। उसने खुद इटालियन पोर्शंस लिखे हैं और उन्हें परफॉर्म किए हैं, तो मुझे जेन्युइनली नहीं लगता कि ये चोरी वाला सिचुएशन है। और एक और बात, हर मेलोडी जो इंडियन कानों को कॉपीड लगती है ना, जरूरी नहीं है कि वो कॉपीड ही हो। What if that melodic phrasing is just culturally Italian? क्योंकि हम Indian listeners automatically assume कर लेते हैं कि unfamiliar melody मतलब lifted melody. And सच में internet को context से ज़्यादा outrage पसंद है. We know it. वैसे इस वक्त number 9 पे सैयारा का title track भी quietly अपना emotional empire build कर रहा है. लेकिन अब charts पे आ रहा है एक और धुरंधर का chapter. And unlike Mashuka, ये गाना subtle नहीं बनना चाहता. This one walks in with pure vibe energy. Gaana number 8 is hafte. Main aur tu by Jasmine Sandlas from Dhurandhar, The Revenge.
1: Number 8.

0: सुरेन के साथ only on Mirchi. It's hot. Mirchi. इसका बना उसका बना सबका बना क्या बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा
1: Mirchi मुर्गा. हेलो भाई मांजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ. आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
2: अथॉरिटी से बनवाया था, शेखराय से.
1: अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
2: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर.
1: किस दलाल से बनवाया था? अपने नाम याद है उसका?
2: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका.
1: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं.
2: तो कोई बात नहीं होती, कैंसिल हम दलाल को, दलाल को पकड़ेंगे सर, हमें क्यों पकड़ेंगे?
1: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
2: तो बनाकर तो उसने था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था.
1: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
2: पैसे तो पूरे दिए थे उसको.
1: नहीं, मेरे को दिए आपने?
2: नहीं, आपको तो नहीं दिए.
1: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई. उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया है.
2: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा लो.
1: अरे उन्होंने क्या कहा था यार? उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा, जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है. मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चला कट जाएगा. ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है यार? उस वक्त नहीं सोचा था जब हम बैठे हुए हैं यहाँ पे आपकी सेवा के लिए. आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया.
2: सर मैं दलाल से बात करूंगा, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊंगा
1: कैंसिल? मैं क्या जानू, उसे बनवाया था उससे पूछे भाई.
2: जिसने ज्यादा कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने ज्यादा कुछ कहा नहीं हमको, कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा बस ठीक है चल जाएगा, सबका बनाते हैं, कितने सालों से बना रहे हैं.
1: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
2: हाँ जी.
1: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे हैं? मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा है? मैंने तो बस सूचित करना था, करने दे. मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं.
2: गलती होगी साहब जी,
1: गलती होगी साहब जी. कान पकड़
2: पकड़ ली,
1: मेरे को दिख रहा है यहाँ से, मेरे को उल्लू बना रहा है यार. इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकड़ू को. हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया. अब भाई ये जो दलाल है नहीं, वो एजेंट तो चला गया. अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार. बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ only on मिर्ची. It's hot.
3: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके. और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर. विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे.
4: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है. मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
5: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा.
4: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
6: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा.
4: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो.
7: भाई क्या कर रहा है तू? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है. गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट.
8: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ. कॉल नाउ 7070-7687.
0: Only on Mirchi. It's hot. Number 7.

नंबर 6 पे इस वक्त फुल वेडिंग सीजन हिस्टेरिया क्रिएट कर रहा है ये गाना ब्याह करवा दो जी फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है। वरुण धवन इज इन फुल केओस एनर्जी मोड। मृणाल ठाकुर लुकिंग लाइक शी वॉक्ड आउट ऑफ अ यशराज शादी यूनिवर्स। और मिक्का पाजी तो वही कर रहे हैं जो मिक्का पाजी पिछले 20 सालों से करते आ रहे हैं, कमांड इंडियन बारात्स। देखिए गाना काम कर रहा है, पिछले हफ्ते के मुकाबले ये 2 स्पॉट्स ऊपर भी आया है, लेकिन इशू ये नहीं है। कुछ गाने सिर्फ मोमेंट कैप्चर करते हैं एंड कुछ गाने वक्त कैप्चर करते हैं, दोनों में फर्क होता है। वैसे व्याह करवा दो जी इज अ फन सॉन्ग, इट्स अ लाउड सॉन्ग, इट्स अ सेलिब्रेटोरी सॉन्ग, लेकिन सच ये है मुझे नहीं लगता कि 3 महीने बाद हम इसे वॉलंटेरिली सर्च करेंगे, क्योंकि म्यूजिक का असली पर्पस वायरलिटी नहीं होता, इमोर्टैलिटी होता है। बार बार सुनने का मन करना चाहिए। जब सिंगर माइक के सामने खड़ा होता है ना, वो ट्रेंड नहीं बनना चाहता, वो याद रहना चाहता है। और फिर कुछ आवाजें आती हैं जो वक्त से ऊपर चली जाती हैं। अरिजीत सिंह, सोनू निगम, कुमार सानू, एंड देयर इज आल्सो वन मोर नेम व्हिच इज क्लोज टू माय हार्ट, हरिहरन साहब। बस एक हरकत और माहौल बदल जाता है। तू ही रे, झोंका हवा का, कितनी बातें, और ए आर रहमान के साथ उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को मेलोडी बना दिया। लेकिन एक सिंगर की असली ग्रेटनेस तब दिखती है जब स्टूडियो प्रोटेक्शंस हट जाते हैं, और हरिहरन साहब ने कई बार ए हैरते परफॉर्म किया है एक लाइव कॉन्सर्ट में, और यार वो गाना नहीं लगता।

0: Isn't it beautiful? इसलिए मुझे लगता है कि हमारी ड्यूटी है नए गाने सेलिब्रेट करना, लेकिन लेजेंड्स को आर्काइव नहीं होने देना। और इस हफ्ते का रीवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक इज फ्रॉम ताल। रहमान साहब इज इन डिवाइन मोड, हरिहरन साहब इज इन इम्पॉसिबल फॉर्म।
1: टॉप 20 रीवाइंड।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: घर दे कम ना रुकन गे ओ जिम विच फट्टे चकांगे।
2: यू बेटर वॉच हर शाइन।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay.
1: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
2: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं।
3: हाय, मैं हूँ आलिया भट्ट और आप सुन रहे हैं मिर्ची।
4: विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी हैप्पी ईद।
1: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक।
2: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो।
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
5: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot. Number 5.

0: नंबर पांच पे इस वक्त प्योर बॉलीवुड रोमांस डिस्कोर्स को हाईजैक कर चुका है गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर। हमजा और यालीना की लव स्टोरी का वो चैप्टर जहां एवरीथिंग स्टिल फील्स वार्म, इट फील्स सेफ, इट फील्स ब्यूटीफुल। अब तक बिट्रेल्स नहीं आया है, धोखा नहीं आया है, नो एस्पियनेज स्कार्स, बस दो लोग जो स्लोली एक दूसरे की दुनिया बन रहे हैं। एंड ऑनेस्टली धुरंधर ने लव को बहुत फिल्मी तरीके से नहीं, बहुत ह्यूमन तरीके से लिखा। दैट ऑकवर्ड सॉफ्टनेस, द इमोशनल डिपेंडेंस, द कंफर्ट, और फिल्म आगे बढ़ती है और प्यार शादी बन जाती है, फैमिली बन जाती है, एक बच्चा आ जाता है, अंटिल द ट्रूथ डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग कि हमजा सिर्फ एक पति नहीं था, वो एक इंडियन स्पाई जासूस था और उसे अपना वतन चूज करना पड़ा, इवन ओवर द पीपल ही लव्ड मोस्ट। लेकिन जो चीज कभी खत्म नहीं हुई वो था उसका इश्क। और शायद इसलिए धुरंधर 2 का एक गाना आखिरी इश्क मुझे एक हार्ट ब्रेक सॉन्ग नहीं लगता, ये मुझे क्लोजर लगता है। इफ गहरा हुआ वॉज द फर्स्ट हार्ट बीट, आखिरी इश्क इज द लास्ट ब्रेथ। मैं ना रहा तो क्या हुआ, तेरे पास है इश्क मेरा। यार क्या राइटिंग है। आदित्य धर ने सिर्फ स्पाई थ्रिलर नहीं बनाई, उन्होंने एक लव स्टोरी को एक प्रॉपर इमोशनल एंडिंग दी है। और इस वक्त टेक्निकली चार्ट्स पे अगला गाना तो है अक्षय कुमार की कमबैक फिल्म भूत बंगला का तू ही दिसदा, विच इज ऑन नंबर 4। लेकिन कुछ मोमेंट्स काउंटडाउन लॉजिक से बड़े होते हैं। एंड आज वी फिनिश हमजा और यालीना की लव स्टोरी प्रॉपरली। माय पिक ऑफ द वीक इज फ्रॉम धुरंधर 2 द रिवेंज बाय द मैन ऑफ द मोमेंट जुबिन नौटियाल एंड शाश्वत सचदेव। ये है आखिरी इश्क।
1: पिक ऑफ द वीक।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिबलिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
4: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
5: वीडियो गेम्स
4: बंद हो गया,
5: अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
4: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
3: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: नंबर दो पे इस वक्त फुल मास हिस्टेरिया क्रिएट कर रहा है वाओ फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है, एंड ऑनेस्टली ये मेरे लिए जेन्युइनली सरप्राइजिंग है क्योंकि ये गाना एक महीना बिता चुका है लेकिन शायद फिल्म थिएटर्स में आते ही इसका बज और बड़ा हो गया है। और शायद उसका रीजन सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, इमोशन है, क्योंकि अगर आपने वरुण धवन का अपने डैड डेविड धवन के साथ वो इंटरव्यू देखा है देन यू नो दैट दिस इज डेविड सर्स लास्ट फिल्म एज अ डायरेक्टर। यार क्या लेगेसी है इनकी, हीरो नंबर वन, कूली नंबर वन, राजा बाबू, पार्टनर, बीवी नंबर वन, मुझसे शादी करोगी, हिंदी सिनेमा की कॉमेडी डीएनए में परमानेंटली लिखी हुई फिल्म्स हैं ये, ऑल डायरेक्टेड बाय डेविड धवन। लेकिन उस इंटरव्यू में एक बहुत ही स्वीट मोमेंट था, एक बहुत ही ह्यूमन मोमेंट। वरुण अपने फादर को लिटरली कन्विंस कर रहे हैं कि अब रेस्ट कर लो, हॉलीडेज पे जाओ, लाइफ एंजॉय करो, लेकिन डेविड सर वो बस अंडा पाव की बात कर रहे हैं। स्टारडम के बाद भी सिंप्लिसिटी नहीं गई और शायद इसलिए उनकी फिल्म्स में वो वार्म्थ, वो मिडिल क्लास मैडनेस, वो ह्यूमन केओस हमें अब भी दिखता है।
1: See, Papa, what we want as children, if I can tell you, you know, people, yeah, or any child wants is that if you have, आपने पैसा कमाया, नाम कमाया, शोहरत कमाया, तो आप चाहते हैं कि आपके माँ बाप आराम करें। बट मेरे माँ बाप बहुत हाइपर है, तो मुझे कोई एडवाइस दे सकते हैं उनको थोड़ा सा? आई कीप टेलिंग देम रिलैक्स, आपको हॉलीडे जाना है, फर्स्ट क्लास की टिकट कर, आपको जहाँ जाना है मैं भेजने के लिए तैयार, आपको जो चाहिए दुनिया में मैं देने के लिए तैयार हूँ,
2: मुझको भीड़ में छोड़ दो।
1: इनको अंडा पाव ही खाना है, इनको
2: वही मैं बड़ा ही वही हुआ। मैं जब सांता क्रूज़ ईस्ट में रहता था, रात को हम लोग सब वही अंडा पाव ही मिलता था, रात को 12 बजे ही वो जो चले गए उधर खा के आ गए, पर वो मजा अलग ही था ना। एंड अ स्ट्रगल, एवरीवन हैज टू डू स्ट्रगल। ये बोलते हैं कि पहली शॉट में जो हिट फिल्म दे देता है ना तो उसकी आगे की लाइफ खराब हो जाती है।
0: हिट फिल्म पहले मिल जाए तो लाइफ खराब हो जाती है, डूड व्हाट अ लाइन। डेविड सर हैप्पी रिटायरमेंट। लेकिन अभी एपिसोड एंड हो रहा है उस फिल्म मेकर के साथ जिसके पास इस वक्त बॉलीवुड का हॉटेस्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स है, आदित्य धर और धुरंधर का अनस्टॉपेबल स्टॉर्म, नंबर वन फॉर अ 15th टाइम ऑन द मिर्ची टॉप 20 है जैस्मिन सैंडलर्स एंड मधुवंती बागची का शरारत। नंबर वन।

0: और बस इसी के साथ मिर्ची टॉप 20 का ये एपिसोड यही खत्म होता है। देखो हाइप थी, हार्ट ब्रेक भी था, नॉस्टैल्जिया भी था और थोड़ी सी अनकंफर्टेबल ऑनेस्टी भी थी। बॉलीवुड हर हफ्ते बदलता है लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती एंड दैट इज ग्रेट म्यूजिक जो इवेंचुअली अपना रास्ता बना ही लेता है। फिर मिलूंगा आपसे किसी और मोड पे। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: मिर्ची गानों की ईदी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: DJ Bridget.
1: वीकेंड ऑफिशियली एक्टिवेटेड, अटेंडेंस लग गया है। कल तक जो लोग बोल रहे थे मैं घर पे चिल करूंगा, वो अब मिरर के सामने आउटफिट चेंज कर रहे हैं कि नहीं। क्लब मिर्ची शुरू होता है यही से विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। हमारे साथ पार्टी का थर्मोस्टैट फुल हाई, स्ट्रेच कर लो, डांस फ्लोर पे नीज की वारंटी खत्म होने वाली है। इट्स टाइम टू लीन ऑन विद मेजर लेजर, लेट्स।

सजना वीकेंड पे रिलेशनशिप स्टेटस सिंपल है, कमिटेड टू द डांस फ्लोर, क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योम देगा। टाइम टू लेवल अप, यस।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Rabana. Burka, burka. Navid wala burka. Mirchi burka.
2: Hello.
3: मैडम डिस्टरबेंस आ रही है क्या अभी?
2: हेलो डिस्टरबेंस तो आ रही है, कौन बोल रहे?
3: एक सेकंड रुकिए। छोटू नीचे सीढ़ी सही पकड़ यार। हाँ नीचे सीढ़ी सही पकड़ ले।
2: हेलो
3: एक सेकंड मैडम होल्ड करिए। मैडम डिस्टरबेंस अभी आ रही है?
2: कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे?
3: मैं खंबे पे से बोल रहा हूँ, लाइन मैन बोल रहा हूँ। आपके फोन की तार चेक कर रहा हूँ, डिस्टरबेंस इसलिए आ रही है। यहाँ पे कुछ तार मिले पड़े हैं आपके, अभी भी आ रही है?
2: आप पागल हो गए, मोबाइल पे फोन लगा रहे हैं और डिस्टरबेंस आ रही है।
3: मोबाइल पे
2: और क्या,
3: ये आप अभी मोबाइल से बात कर रही है?
2: तो आपको नहीं पता मोबाइल नंबर है?
3: आपने पहले तो नहीं बताया मोबाइल से बात कर रहे हैं।
2: आपको बताना चाहिए था ना
3: यार, आपको पहले मैडम बताना चाहिए था। यहाँ खम्बे पे चढ़ा हुआ हूँ, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मैं डिस्टरबेंस ढूंढने जा रहा हूँ तार से।
2: आप खम्बे पे चढ़े हुए हैं और मेरे को बोलते हैं डिस्टरबेंस आ रही है। दिमाग खराब,
3: ये दिमाग खराब की क्या बात है?
2: आपका दिमाग खराब,
3: आपका दिमाग, आपका फोन खराब है, मेरा दिमाग खराब है। पहले डिसाइड करिए,
2: अपना नाम बता। मैं तेरी कंपनी
3: नवेद लिखिए, नवेद
2: आ रही है।
4: पायल में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। डिस्टरबेंस भी गई, मैं भी चला जाऊंगा। मैंने आपका मुर्गा बनाया, छोटा सा मजाक कर दिया आपके साथ।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
7: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
8: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
9: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM मिर्ची वन।
12: इट्स हॉट।
13: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the
1: iPay. Arz kiya hai.
2: Irshad.

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स सिंपल सीधा नो टेंशन चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5 10 15 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st आईपी स्मॉलर फीस बिगर स्माइल्स TNC अप्लाई
1: फिर खाली हाथ चले आए मेरी ईदी कहाँ है
2: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं
3: नमस्कार दिस इज रवीना टंडन आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद
1: अरे वाह ये हुई ना बात आपको भी ईद मुबारक
2: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
5: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है. What did you steal in your childhood?
4: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे. मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसके चॉकलेट्स खत्म कर दिए. कभी आज तक बोला नहीं कि वो मैं था.
3: What a way to confess, अभय देओल. अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज ए चाइल्ड. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
2: Only on Mirchi, it's hot.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Hello, Mirchi helpline.
2: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: मैं मराठी हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड बंगाली है, उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कैसे समझाऊं?
2: अरे गोचू, बंगाली है तो बंगाली में समझाना।
3: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस।
4: 89.6 मिर्ची
5: मिर्ची गानों की ईदी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: कि बम में है दम।
1: अपनों के साथ मनाओ ईद, मिर्ची पर सुनो गानों की ईदी की म्यूजिकल ट्रीट।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
2: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं।
3: हाय, मैं हूँ आलिया भट्ट और आप सुन रहे हैं मिर्ची।
4: विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी हैप्पी।
1: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक।
2: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो।
5: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
6: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
5: Gano ki Eid on Mirchi. It's hot. It's hot. Biryani ki khushbu, sevai ki swaad, Eid ki sabko mubarakbad.

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Murga, murga. Nabil wala murga. Mirchi, murga.
3: हेलो
4: हाय, अब अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना।
3: हाँ।
4: कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
5: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहें। नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
3: जी कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
5: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
3: मीसम नाम है।
5: मीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
3: 1200 रुपए।
5: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दीजिए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
3: हाँ जी, 1st September 1980।
5: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
3: जी
5: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं? गर्लफ्रेंड से ज्यादा करते हैं। सर, किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
3: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
5: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
3: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
5: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर, एक ही बार में पूछ लीजिए ना, आपको क्या पड़ी है उसके पीछे पढ़ने की? तो सर, आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड।
3: सर
6: इतना गुस्सा मत होइए। सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मुझे आपकी गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पहले, उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
3: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है।
6: नहीं सर, मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं।
3: मेरे साथ
6: मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को।
7: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
8: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर विद डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, with the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
9: How's the Josh?
10: Hi sir!
9: How's the Josh?
10: Hi sir!
11: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
12: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
13: 89.6 FM मिर्ची 1,
14: इट्स हॉट।
15: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर

वेलकम बैक क्लब मिर्ची पे डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। वीकेंड स्क्वाड आते हैं इंसान बनके, जाते हैं हूलिगन बनके। चलो मस्तों का झुंड, लेट्स गो।

0: प्यारी रे। 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay, best rate, no stress. iPay wallet का भरोसा, download कीजिए आज ही. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay.
1: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
2: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं?
3: Hi, this is Salman Khan, और आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक.
1: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक।
2: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो।
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
4: Ladies and gentlemen, we are gonna go. We are gonna go. We are

फिक्स का ट्रूथ पोस्ट 2 सेकंड एडिटिंग 2 घंटे क्लब मिर्ची मिर्ची और योंतिका जो लोग गैलरी खोल के बैठे भाई इसमें तेरा घाटा अभी तो टाइम है डांस फ्लोर पे मचाने का।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: हिमेश रेशमिया, अगर आप एक रेडियो जॉकी होते तो आप किस टॉपिक पर प्रोग्राम करते?
4: मैं डेफिनेटली लव का ही प्रोग्राम करना चाहता, जो प्रॉब्लम है कॉलर की और रोमांस में, लव में छोटी छोटी बातें, वो कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
3: हिमेश रेशमिया, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boldal.
2: Only on Mirchi, it's hot.

मिर्ची पे डीजे रिचर्ड मिर्ची और यौन का आपके साथ मंडे का अलार्म और पार्टी का एंड दोनों इलीगल लगते हैं राइट और इन सबको इग्नोर करके हम बनते हैं क्रिमिनल एवरी वीक लेट्स गो।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: मेरे हस्बैंड ऑफिस से रोज लेट आते हैं और खाना खा के सीधा सो जाते हैं, क्या करूं?
2: अरे मैडम, उनको बोलो खाना खा के सीधा ना सोए, बाएं साइड सोए, उससे क्या हेल्थ भी अच्छी रहेगी।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

संभालने का एक ही तरीका है, क्लब मिर्ची सुनो हमारे साथ, नाचो चिल करो एवरी वीकेंड। डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका आपके साथ, और वीकेंड कॉन्फिडेंस फुल बैटरी लॉजिक लो पावर मोड पे रख के चलिए चलते हैं चोली के पीछे।

डीजे मिर्ची मिर्ची और योंतिका, चांदनी रातों में चांदनी का गाना, इससे ज्यादा अच्छा कॉम्बो हो ही नहीं सकता। और क्लब मिर्ची कम्युनिटी में हम ऐसे रहते हैं जैसे इन द गेटो। लेट्स गो।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके. और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर. विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे.
2: तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट.
3: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट
4: दोनों मिलेगा.
5: का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6
7: FM मिर्ची वन.
8: इट्स हॉट.
9: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन।
1: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
2: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं।
3: Hi everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: This is Mirchi and it's hot. आप सबको ईद मुबारक।
1: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक।
2: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो।
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
5: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go on a ride.

0: मिर्ची इट्स हॉट। रजाम और आज जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर दी अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज दी अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
1: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स स्टैंडर्ड में मैं दो बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
0: वेल रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बोल्डा,
3: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

वीकेंड आते ही सैलरी और स्लीप दोनों गायब। जवा हो यारो तो अफकोर्स क्लब मिर्ची के साथ एंजॉय करो, लुट जाओ डीजे रिचर्डन मिर्ची और यो दिक्कत।

0: बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
1: आई रिसेंटली हैड अ चाइल्ड एंड आई थिंक आई एम डूइंग अ गुड जॉब रेजिंग हिम, पर मेरी सास वो मुझे ताने मारती ही रहती है, ये करो वो करो, मैं क्या करूं?
0: तो श्रीमती जी, आप एक काम कीजिए, आप अपने बच्चे पे ध्यान दे रहे हैं तो सासू माँ को कहें वो अपने बच्चे पे ध्यान दे।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
3: मिर्ची घड़ी में बच गए 9।

0: Ki Idi, only on Mirchi FM.
1: Hello, Mirchi Helpline.
2: जी फरमाइए।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
2: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
3: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
4: खूब मिलेगा, मिलेगा।
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM मिर्ची वन,
7: इट्स हॉट।
8: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो,
9: on a ride.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड.

गहरा होगा। क्लब मिर्ची डीजे रिचर्ड के साथ, एंड इफ यू वांट टू गिव हिम अ शाउट आउट, ही इज देयर ऑन सोशल्स, डीजे रिचर्ड ऑफिशियल। और मैं आपकी लाल परी, नाम है ओयोंटिका, AYANTIKA। हिट मी अप एंड से हाय, आई विल से हाय बैक।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
4: शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय।
5: वो उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश, जोश, जोश।
4: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
5: सलमान खान एंड सैफ अली खान, वो तो उन्होंने कौन से पिक्चर में भाई,
4: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होंगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
5: मैं, मुझे नहीं पता।
4: हम साथ
5: कौन
4: साथ
5: सी है? ओ, हाँ, हम साथ साथ है। और
4: नाना पाटेकर, कटरीना कैफ,
5: ये भाई बहन थे। वेलकम।
3: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड, बॉलीवुड, बॉलीवुड बोल्डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go.

यहाँ पे जायज है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंटिका। एज बस नंबर है, एम्बैरेसिंग डांस मूव्स फॉरएवर। एंजॉय करेंगे हमारी सेकंड हैंड जवानी।

हिलना डुलना तो बनता है यार मेरे डोलना। म्यूजिक जो चल रही है क्लब मिर्ची पे वो भी डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका के साथ। सो ऑल द बार्बी गर्ल्स टेक ऑफ योर पिंक हील्स, सेलिब्रेशन इंपॉर्टेंट है।

0: सभी को झेला है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका आपके साथ। डांस फर्स्ट, लाइफ डिसीजंस बाद में, शादी करनी है कि नहीं वो बाद में सोचेंगे, ठीक है? लेट्स गो।
1: कब तक जवानी छुपाओगे रानी?

क्लब में रुचि ऑलमोस्ट खत्म, मेमोरीज सेव कर लो, डिग्निटी वैसे भी नहीं बची है। डीजे रिचर्ड आउट, बट बिफोर वी गो मिर्ची ऑय ऑन द गाइस, यू आर विद द साइन ऑफ ट्रैक एंड इट्स कॉल्ड अराइवल। वेल दैट्स व्हाट यू एंजॉय ऑन आवर टिप।

0: मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची बताओ सवाल क्या है?
0: So I recently met a girl through arranged marriage setup. You know she is good, but she earns way more than me. I feel there is a problem. क्या करूं?
1: तो तुम ये पूछ रहे हो कि वो तुमसे ज्यादा कमाती है तो मैं क्या करूं? शर्म करो शर्म।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
3: मिर्ची गानों की ईदी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक,
2: गानों की ईदी ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: छुटे मुझसे
1: ओलियन मिर्ची इट्स हॉट
2: मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक
3: गानों की ईदी ओलियन मिर्ची इट्स हॉट।

वीकेंड ऑफिशियली एक्टिवेटेड, अटेंडेंस लग गया है। कल तक जो लोग बोल रहे थे मैं घर पे चिल करूंगा, वो अब मिरर के सामने आउटफिट चेंज कर रहे हैं कि नहीं। क्लब मिर्ची शुरू होता है यही से विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। हमारे साथ पार्टी का थर्मोस्टैट फुल हाई, स्ट्रेच कर लो, डांस फ्लोर पे नीज की वारंटी खत्म होने वाली है। इट्स टाइम टू लीन ऑन विद मेजर लेजर, लेट्स गो।

सजना वीकेंड पे रिलेशनशिप स्टेटस सिंपल है, कमिटेड टू द डांस फ्लोर, क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोन टेका, टाइम टू लेवल अप, यस।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. Nabiyat wala murga. Mirchi, murga.
3: हेलो
4: हाय, अब अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
5: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहें। नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
3: जी, कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
5: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
3: मीसम नाम है।
5: मीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
3: 1200 रूपए।
5: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दीजिए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
3: हाँ जी, 1 सितंबर 1980।
5: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
3: जी
5: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं?
3: क्लाइंट्स और गर्लफ्रेंड्स वगैरह।
5: गर्लफ्रेंड से ज्यादा करते हैं सर? किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
3: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
5: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
3: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
5: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर एक ही बार में पूछ लीजिए ना, आपको क्या पड़ी है उसके पीछे पढ़ने की? तो सर आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड।
3: सर
6: इतना गुस्सा मत होइए। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मुझे आपकी गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पहले, उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
3: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है।
6: नहीं सर, मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, मेरे साथ
3: पिटोगे,
6: मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को।
7: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot,
8: it's hot.
9: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go
10: on a ride.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन।
1: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
2: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं।
3: दिस इज तापसी पन्नू,
1: आप सभी को ईद मुबारक।
4: इट्स हॉट।
1: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक।
2: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो।
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
5: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: हिमेश रेशमिया, अगर आप एक रेडियो जॉकी होते तो आप किस टॉपिक पर प्रोग्राम करते?
4: मैं डेफिनेटली लव का ही प्रोग्राम करना चाहता, जो प्रॉब्लम है कॉलर की और रोमांस में, लव में, छोटी छोटी बातें, वो कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
3: हिमेश रेशमिया, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डाल,
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.

0: Ritchie, only on Ritchie. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
2: मेरे घर का फ्रिज बिगड़ गया है, क्या करूं?
1: फ्रिज बिगड़ गया है, बड़ा ही गंभीर मामला है। मैं तो यही कहूंगा कि परवरिश में ध्यान रखना था, अब क्या?
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
4: मिर्ची गानों की ईदी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

Mochi. It's hot. Hot. बिरयानी की खुशबू, सेवई की स्वाद, ईद की सबको मुबारकबाद।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: मैडम, डिस्टरबेंस आ रही है क्या अभी?
2: हेलो, डिस्टरबेंस तो आ रही है, कौन बोल रहे?
3: एक सेकंड रुकिए। छोटू, नीचे सीढ़ी सही पकड़ यार। हाँ, नीचे सीढ़ी सही पकड़ ले।
2: हेलो,
3: एक सेकंड मैडम होल्ड करिए। मैडम, डिस्टरबेंस अभी आ रही है?
2: कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे?
3: मैं खंबे पे से बोल रहा हूँ, लाइन मैन बोल रहा हूँ। आपके फोन की तार चेक कर रहा हूँ, डिस्टरबेंस इसलिए आ रही है, यहाँ पे कुछ तार मिले पड़े हैं आपके। अभी भी आ रही है?
2: आप पागल हो गए, मोबाइल पे फोन लगा रहे हैं और डिस्टरबेंस आ रही है।
3: हैं, मोबाइल पे?
2: और क्या,
3: ये आप अभी मोबाइल से बात कर रही है?
2: तो आपको नहीं पता मोबाइल नंबर है?
3: आपने पहले क्यों नहीं बताया मोबाइल से बात कर रहे हैं?
2: आपको बताना चाहिए था ना
3: यार, आपको पहले मैडम बताना चाहिए था। यहाँ खंबे पे चढ़ा हुआ हूँ, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मैं डिस्टरबेंस ढूंढने जा रहा हूँ तार से।
2: आप खंबे पे चढ़े हुए हैं और मेरे को बोलते डिस्टरबेंस आ रही है, दिमाग खराब?
3: ये दिमाग खराब की क्या बात है?
2: आपका दिमाग खराब,
3: आपका दिमाग, आपका फोन खराब है, मेरा दिमाग खराब है, पहले डिसाइड करिए।
2: अपना नाम बता, मैं तेरी कंप्लेंट।
3: नवेद लिखिए, नवेद
2: आ रही है।
4: पायल, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, डिस्टरबेंस भी गई, मैं भी चला जाऊंगा। मैंने आपका मुर्गा बनाया, छोटो सा मजाक कर दिया आपके साथ।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
6: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
7: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट
10: लेडीज एंड जेंटलमैन।

वेलकम बैक क्लब मिर्ची पे डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिक का वीकेंड स्क्वाड आते हैं इंसान बनके जाते हैं हूलिगन बनके चलो मस्तों का झुंड लेट्स गो

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन।
1: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
2: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं।
3: हाय दोस्तों, मैं हूँ मिका सिंह और मेरी तरफ से आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक।
2: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो।
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
4: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

वेलकम बैक। क्लब मिर्ची जा रही है डीजे विचरण मिर्ची और यौन देखा के साथ। वीकेंड मेमोरीज और ब्लरी फोटोज, आइकॉनिक कॉम्बो। उसपे अगर इस वीकेंड पे आपका फर्स्ट किस है, नेक्स्ट सॉन्ग गोज आउट टू यू बाय हनी सिंह।

ट्रूथ पोस्ट दो सेकंड एडिटिंग दो घंटे क्लब मिर्ची मिर्ची रिचर्ड मिर्ची और योंतिका जो लोग गैलरी खोल के बैठे भाई इसमें तेरा घाटा अभी तो टाइम है डांस फ्लोर पे मचाने का।

जमी मिर्ची ओयों देखा, पैर खुद ब खुद नाचेंगे क्योंकि हम हैं क्लब मिर्ची के धुरंधर्स। लेट्स गो लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिबलिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
4: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
5: वीडियो गेम्स हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
4: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
3: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
2: Only on Mirchi, it's hot.

मिर्ची पे डीजे रिचर्ड मिर्ची और यौन तक आपके साथ मंडे का अलार्म और पार्टी का एंड दोनों इलीगल लगते हैं राइट और इन सबको इग्नोर करके हम बनते हैं क्रिमिनल

सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

我那叫啥的鸡排给。

निकालने का एक ही तरीका है, क्लब मिर्ची। सुनो हमारे साथ, नाचो, चिल करो एवरी वीकेंड। डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका आपके साथ, और वीक एंड कॉन्फिडेंस फुल बैटरी, लॉजिक लो पावर मोड पे रख के चलिए, चलते हैं शिवली के पीछे।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
2: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
3: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पूछा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
2: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
3: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
2: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
3: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका घटो पहले भी बताओ ना मेरे को।
2: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, कैसे पैदल आ रहे हो?
3: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
2: कौन कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
3: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
2: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
3: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया है फोन।
2: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
3: आ गए वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
2: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
3: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो जो रेड वेड मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है। मैं आप पहला रहा हूँ,
2: मैं बाद में मिलूंगा आपसे। यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
3: किसकी डेथ हो गई सर?
2: मेरे भाई की डेथ हो गई।
3: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स फार्म में आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नहीं है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
2: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसे हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ रहे हो?
3: मैं कहाँ रहा हूँ,
2: सॉरी आप अभी कहाँ रहो?
3: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
2: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, एक परेशान हूँ मैं, हर साल का रिटर्न वेटर्न सब फाइल कर देता हूँ वो भी।
3: आशीष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
2: यार।
3: थैंक यू
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
5: इट्स हॉट।
6: नहीं बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
7: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
8: कैसे रुक सकता है?
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
4: FM Mirchi 1. It's hot.
10: Ladies and gentlemen.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन।
1: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
2: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं।
3: Hi Mirchi listeners, this is Jacqueline Fernandez.
4: Wishing all of you guys a very very Eid Mubarak.
5: It's hot.
1: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक।
2: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो।
0: Only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.
6: Ladies and gentlemen, we are gonna go. We are gonna...

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है. What did you steal in your childhood?
4: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे. मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसके चॉकलेट्स खत्म कर दिए कभी, और आज तक बोला नहीं कि वो मैं था.
3: What a way to confess, अभय देओल. अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज ए चाइल्ड. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boldal.
2: Only on Mirchi, it's hot.
5: Ladies and gentlemen.

सैलरी और स्लीप दोनों गायब। जवा हो यारो तो अफकोर्स क्लब मिर्ची के साथ एंजॉय करो, लुटे जाओ डीजे रिचर्डन मिर्ची और दिक्कत।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो भाई मांजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
3: अथॉरिटी से बनवाया था, शेखराय से।
2: अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
3: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
2: किस दलाल से बनवाया था? अपने नाम याद है उसका?
3: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका।
2: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
3: तो कोई बात नहीं होती, कैंसिल हम दलाल को पकड़ेंगे सर, हमें क्यों पकड़ेंगे?
2: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
3: तो बनाकर तो उसने था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
2: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
3: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
2: नहीं, मेरे को दिए आपने?
3: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
2: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया है।
3: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा लो।
2: अरे उन्होंने क्या कहा था यार? उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा, जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चला कट जाएगा। ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है यार? उस वक्त नहीं सोचा था जब हम बैठे हुए हैं यहाँ पे आपकी सेवा के लिए। आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
3: सर मैं दलाल से बात करूँगा, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊंगा?
2: कैंसिल मैं क्या जानू, उसे बनवाया था उससे पूछे भाई।
3: जिसने ज्यादा कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने कुछ कहा नहीं हमको, कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा बस ठीक है, चल जाएगा, सबका बनाते हैं, इतने सालों से बना रहे हैं।
2: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
3: हाँ जी।
2: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे हैं? मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा है? मैंने तो बस सूचित करना था, करना था, मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
3: गलती होगी साहब जी,
2: गलती होगी साहब जी। कान पकड़
3: पकड़ ले,
2: मेरे को दिख रहा है यहाँ से, मेरे को उल्लू बना रहा है यार। इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकड़ो को। हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया। अब भाई ये जो दलाल है नहीं, वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पगल। 89.6
5: लेडीज एंड जेंटलमैन।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.
1: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
2: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं.
3: हाय, मैं हूँ आलिया भट्ट और आप सुन रहे हैं मिर्ची.
4: विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी हैप्पी.
1: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक.
2: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो.
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
5: Ladies and gentlemen.

तो प्यार आपका गहरा होगा. क्लब मिर्ची डीजे रिचर्ड के साथ. एंड इफ यू वांट टू गिव हिम अ शाउट आउट, ही इज देयर ऑन सोशल्स, डीजे रिचर्ड ऑफिशियल. और मैं आपकी लाल परी, नाम है ओयोंदिका, AYANTIKA. हिट मी अप एंड से हाय. आई विल से हाय बैक.

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: रजा मुराद, जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर द अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज द अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
4: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स्थ स्टैंडर्ड में मैं दो बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
3: वेल, रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood,
2: Bollywood, only on Mirchi, it's hot.

जायज है। क्लब रूटीन विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योन टिका। एज बस नंबर है। एम्बैरेसिंग डांस मूव्स फॉरएवर। एंजॉय करेंगे हमारी सेकंड हैंड जवानी।

हिलना डुलना तो बनता है यार मेरे डोलना। म्यूजिक जो चल रही है क्लब मिर्ची पे, वो भी डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंटिका के साथ। सो ऑल द बार्बी गर्ल्स टेक आउट योर पिंक हील्स, 'cause सेलिब्रेशन इंपॉर्टेंट है।

0: डीजे चरण मिर्ची और योनिका आपके साथ। डांस फर्स्ट, लाइफ डिसीजंस बाद में, शादी करनी है कि नहीं वो बाद में सोचेंगे, ठीक है? लेट्स गो।
1: कब तक जवानी छुपाओगे रानी?

सब मिर्ची ऑलमोस्ट खत्म, मेमोरीज सेव कर लो, डिग्निटी वैसे भी नहीं बची है. डीजे रिचर्ड आउट. बट बिफोर वी गो, मिर्ची और योंते गाइस हियर विद द साइन ऑफ ट्रैक एंड इट्स कॉल्ड अराइवल. वेल दैट्स व्हाट यू एंजॉय ऑन आवर डिपार्चर. टिक

89.6 Mirchi 1. It's hot.